0: अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, हु कुचरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी, न प रारवान वक्त की दग जवानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा, तुम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही, और ये वाजिदा ना द दग दानो चकम दागुन दी अगर हम पर मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन, कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी, और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी, कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो के दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

जना आपता सुमरातले शे कालकुले शे 55 38 282 495 प्रोग्राम की चीजें बिल्कुल नेक बनेगा शामिल दले शे कैसे किस्मा पुख्ता ने लरे बिल्कुल तासु पुख्ता ना कोले शे

0: टूपी मेडिकल केयर सेंटर, टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर दनो नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर शहजाद फिजियोथेरेपिस्ट द जुमे हफ्ते और द इतवार पोरस माजीगर सलूर बजो नवाखला तरमाखाम अतो बजो पोरे और दे सरसरा डॉक्टर इमाद जमान सेब शुगर स्पेशलिस्ट वा द जुमेरात पोरस शहर दनो बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर बजो पोरे ओपीडी कवि 24 घंटे सर्विस लेबर रूम मेडिकल स्टोर अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी जनरेटर सहूलत और पेशेंट मेडिकल वार्ड दो पता याद साथ है टूपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा मेले लार टूपी मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वेम नंबर दे 0336-444-5888।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: Hit Rhythm Dilbar FM Get ready to rock 94 Sawabi
1: We'll be back right after the commercial break
2: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की जहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया यकीन के साथ जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है दी कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा एक्टिविटीज पर मबनी जदीद निजाम तालीम सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तल 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा बाग इरम मर्दान शेरगढ़ मर्दान सवावी जैदा और मैनी चौक कोठा या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर राबता कर सकते हैं
3: टोपी मेडिकल

0: ओके जनाब 09382804595। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कुर्बान सो को कम जना सीमा गुल साइलेंट दा ओले कम नो स्टा सिलुना फतम शी जिक सिंग दा ओले साइलेंट
1: नहीं नहीं नहीं आपने बता रहे कुछ हो
0: सही है
1: मनन
0: जी शुक्रिया मनन दिल तो अच्छा कम दिन कमा सर निज दे दुकान हो गा मैं मिठाई तकसीम खड़े हो अच्छे तो वक्त से मौजूद गए माला एहसास रो को आगम पकाम होशे बदकिस्मत है ना मिठाई दुकान कम दिन लरे माना नेक्स्ट कॉलर गुरु जी मुंगसर सुखराज दखम जाना 09382804595। नेक्स्ट कॉलर

Welcome to the show and sing a program. Some zabardast ji, aizatha zama saida salam ji, or dear just salam. After a long time, dear time bad mung sir program shamil shoda irha. Irha pishoch kam den mung ta message kiji. Assalamu alaikum, walaikum assalam. भैया क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं। ताहिरा को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, नहीं सलाम नहीं कहिएगा बल्कि जो है ना, मैं ताहिरा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा, तुम कैसी हो? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो?

हुमेरा मैसेज कीजिए, हुमेरा मनन्ना। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मोमना हमारा साथ दे रही है, मोमना निगार, बहुत बहुत शुक्रिया मोमना निगार, आपने हमारा साथ दिया। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं? सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। सिंह एफएम मौसम जबरदस्त है जी, शुक्रिया जी। ताहिरा था और रानी था हमारा साइड, सलाम ना। अक्सा बिलाल फ्रॉम गदून, शुक्रिया अक्सा बिलाल। वो सनाक मामू सिंह गए आओ प्लीज कला काका साहेब तराशी कहना था। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। सिंह नन्न जमुंगो रिजल्ट दे जी, अल्लाह मु पास करो, अल्लाह मु कामयाब का बच्चे।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94.4 सवाबी। दिलबर एफएम 94.4 सवाबी। दिलबर एफएम 94.4 सवाबी।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

0: अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: ये है रेडियो दिलबर आपकी दिल की आवाज़।

0: Information Station. 94 ML.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।